0: நேயர்களே, நமது திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்திய அலை 1197 கிலோஹெட்ஸில் இன்றைய ஒலிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது ஒலிபரப்பு நாளை காலை 5:50 ஆரம்பமாகும். நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பண்பலை 102.6 MHz கேட்கலாம்.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
2: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
3: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद निशेत और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
2: आइए श्रोताओं, डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
1: So benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data. And UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body, PCI.
2: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त. सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक का उछाल आया. मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया. और डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क यूपीआई लेन देन होगा.

0: could even be penal provision. So even though this is
1: Vishal, we got your question and concern. I think what has happened, in terms of giving it a miss has happened now, because there is no provision, Vishal, where you can go back to so many years to revise this, first of all. There is a schedule in the income tax return, which is called Schedule FA, Foreign Assets. And there is also a schedule called Schedule FSI, which is Foreign Source Income. So if you're generating income out of those assets, you're supposed to be declaring income. And whichever country you reside in, there is a double tax avoidance treaty. You can save the tax. Anyway, your question is relating to non-declaring these particular assets in your return. So I would suggest, Vishal, that you can revise the return which has just been filed, first of all. So you can revise if there is no corresponding income and you're declaring it now, because there is no other way, you can go back so much. There is a provision, Vishal, of ITRU. It's called Income Tax Return Updated. But for filing that updated return, one has to declare extra income. So first year 25%, second year 50%, third year 60%. So I don't think simply because you're having an asset, you should declare additional income. So I think you don't have much choice. You'll have to forget what has happened then. But at least for the year which we are filing now, and if you've already filed, because we've run past the days now, 31st July was the date. So I would suggest for this year, which is 25-26, you revise your return. And in your Schedule FA, you fill up the assets which you have overseas. And I'm assuming while answering, Vishal, that you are a resident at this point of time. If you are a non-resident, which is you've stayed in the outside the country for more than 180 days, you don't need to declare at all. Because for foreign citizens, this is not required. If you are an Indian resident, resident means you've stayed in the country, then you need to declare. So based on what I said, you'll have to take a call. As for the historical part, the historical default, let me not scare you by giving penalties, because you've spoken about the penalties earlier. So I don't want to create a fear in you. But then, yes, you can revise this return, fill up, and just let it be a fresh beginning. In Hindi, we say, jab jaage tab savera. So we cannot, because you cannot revise earlier returns. There is only one provision where you can go to the PCIT, bring to his notice that I want to file. But that is mostly done when people have missed their refunds. In your case, there's no refund. So let us just start now. If there is a notice which you get, call us again. We'll try and suggest you an alternate as to how to sort it out earlier. But at least remove the default going forward, Vishal.
2: Delhi se hamare saath Prem ji jud rahe hain. Prem ji ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Ji, sare team ko mera pranam. Guru ji ko bhi mera pranam.
1: Pranam ji. Guru ji, acha, chaliye, pranam.
3: जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी सीक्रेट लोगों से. सर, ये जो हम लोग के जहाजे में जो कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं, तो पहले सर ये युद्ध जोन में आता था, जिसको हम लोग रिस्क जोन बोलते थे, हाई रिस्क जोन बोलते थे, कहीं कहीं सोमालिया समथिंग लाइक. लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है, और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं कि साहब हम इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे, इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे. तो सर इसका क्या समाधान है सर? क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है? जो सीकर जा रहे हैं, और अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर भेज रहे हैं यहाँ पे, कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज, जून वाइज, या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश डालें सर इस
1: पर? देखिये प्रेमजी जी, आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है. ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं, या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं. अब ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व्ड हैं, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है. तो मुझे लगता है इसमें प्रेम जी जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं, और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है. आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है. तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है. आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं. तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है. मुझसे सवाल प्राची और निशित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचें, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं. आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ.

0: उस रूट पे ना जाए पर आप मजबूरी है अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे। बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
1: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं, हम अमित की कॉल लेंगे मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद सर। जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए, दो चार सेक्टर आप बताएं तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं तो क्या ठीक है क्या?
0: जितेंद्र जी एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, तो आपने जो जिक्र किया कुछ कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं। अच्छा कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू तेल साबुन वगैरह इस प्रकार की फेस क्रीम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं। और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे खाने का सामान लेके आए बिस्किट, तो इनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं, खाने की आपने जो बात करी खाने की भी हो गई ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला, प्राइवेट बैंक देखिए यार नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर गिरे या कौन सा हुए। अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस, मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ एक के मिले जुले थे बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा और वो खुलेगा नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी
1: आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से, अमित है दिल्ली से। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार सर, सर प्रश्न ये है मेरा सर
0: जी।
3: सर अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो बात चल रही है हॉर्मोन ओपन करने के लिए
0: जी,
3: तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रही है? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिसपे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। सर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया है तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर कि 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
0: अमित आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूस पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये तो हर किसी के मन में है और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रालय या कोई भी एक्सपर्ट इस पे टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे खुलेगा कि नहीं, देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपकी दूसरी बात पूछी, इसको हम बाईपार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हां 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में, अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे, और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है, पर आपका जो अंदेशा है आपका जो डाउट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है। जी
4: यस शरद जी, एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, द यूएस सेनेट हैज वोटेड टू अप्रूव अ बिल to sanction Russia and key buyers of its petroleum products such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed as Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose

0: 100% tariffs on goods from countries that are the top five importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharadji, would like to know, you know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
1: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on. So in all, 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports,
0: right,
1: supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay. But this 100% would really put us in problem. As I said, there are five countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. Mm. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there. I hope it doesn't happen, because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. Mm. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters.
0: All right.
2: श्रोताओं, भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे. हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं. मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई. आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1%, जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया. इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई. सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 494,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 21 पैसे पर बंद हुआ. इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल. विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: क्या कारण है और क्या कहते हैं, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
1: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है. उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है. भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए. विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा. बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं, जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख देते. बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं. तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए. आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा. दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है. क्योंकि ये तो सबको, सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा. तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है और

0: हम सभी यहां जो बैठे हैं हम सबके दिमाग में सवाल है। काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए।
1: बिल्कुल। भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मथुरा टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही उसका अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब आता, मतलब 4,00,000 से कम है
0: जी,
2: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो ना करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
0: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है और ये देखिए कहीं इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा। और मैं दो चार चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है। मान लीजिए आपने 2,00,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे 10,00,000 सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2,00,000 से ज्यादा बिजली का बिल, 1,00,000 से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई है, तो ये भी देखनी पड़ती हैं। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही है और वो आ रही है तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए।
1: बीइंग अ सिविलियन ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4,00,000 से कम है तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो हेलो
0: जी।
3: हाँ, मैं राम किशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: जी राम किशन जी,
3: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से है
0: जी।
3: हाँ, 10,000-5,000 वैसे इनकम हो जाती है टोटल
0: जी,
3: तो 3,20,000 तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी है नहीं है?
0: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी, बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटा है तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
4: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
5: नमस्ते मार्केट मदर सिंह। नमस्ते।
4: नमस्कार
5: जी।
0: नमस्कार
5: सर। ये जो वी आर इंपोर्टिंग अबाउट 55% रिसेंट रिपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड आल्सो इट इज वेल नोन दैट अ लॉट ऑफ रिफाइनरीज हैव बीन डिवास्टेटेड इन रशिया बाय यूक्रेन, सो वी आर आल्सो री एक्सपोर्टिंग डीजल एंड पेट्रोल टू बैक, सो व्हाट इज द रिफाइनिंग मार्जिन एंड हु आर द बेनिफिशियरीज कंपनीज? Will there those shares be benefited? As investor, ठीक है, वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, है पर नहीं है एक तरह से, हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं? क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है या आएगा, या फिर ये जो ट्रंप की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी? ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को, तो क्या उसके शेयर में फायदा है या नहीं है? सरकार ने तो शायद नहीं किया होगा।
0: शंकर जी देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज शंकर आई थिंक योर क्वेश्चन एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, व्हेयरएज ऑन वन साइड दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, under recovery from the customers when the crude oil price is high, the cost is high, and you are not charging as much, you know, there's under recovery on petrol, diesel, LPG. On the other side, yes, you're right, we are importing from Russia for export also. So, you know, it's a double-edged sword. So refining margin varies, but your question is private companies, yes. Like for example, the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries, and that can also refine the Western Texas intermediate oil, you know, which is the harder oil, it's not the sweet oil.
4: Sweet oil, yeah.
0: And that is very tough to refine. Mm-hmm. So we are, yes,

0: we are one of the finest refiners in the world, and Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question, whether to invest or not. I would advise that for some time till the matter settle, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
1: Right. And moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the NASDAQ Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,757. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
0: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, throughout the war. Mm. And I think this data this data is a very interesting data, because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now, or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
1: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
2: Namaskar.
1: Namaskar.
2: Copy to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
0: जी,
2: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए
0: जी,
2: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका, हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है. जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने MBA मतलब एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है. डोंट यू थिंक सो?
0: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है. बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल, मैं टिक मारता हूं और आपके लिए कॉपी टू ऑल, आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है. और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा. उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है. टैरिफ आके लगता किस पे? खुद पे ही तो लगता है, इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है. आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी.
3: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा. एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है. इसने ये भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं. पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा. ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा.
0: जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2,000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है. ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे, उनको देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है. तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया. हाँ. लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा. और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है. तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है.
3: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए.
1: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी. एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 0.5%. द वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद स्ट्रॉन्ग गेन्स बॉयड बाय मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड द यूपीआई ट्रांजैक्शंस टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, क्लैरिफाइज द एपेक्स डिजिटल पेमेंट्स बॉडी पीसीआई. एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द Entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार

0: उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेंगे। वे तिरुवन्नामलाई से सड़क मार्ग के जरिए पुदुचेरी पहुंचे और लोक निवास गए, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष RSilvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुदुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, Cars24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தர்மதுரை, அண்ணன் என்னடா, தம்பி என்னடா, சின்னத்தம்பி ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें।

0: श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தர்மம் தலைகாக்கும், இருவர் உள்ளம், கற்பகம் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों,

0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said the strive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organised by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापारिक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित।

0: प्रभावित है। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Vice President C.P. Radhakrishnan will today participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag at Flag Point in Sri Vijayapuram. The Vice President yesterday arrived at Sri Vijayapuram on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. On his arrival at INS Utkrosh, the Vice President was accorded a ceremonial reception and guard of honour. Mr. Radhakrishnan visited the National Memorial Cellular Jail and paid floral tributes at the Martyrs Column and offered his respects at the Swatantrata Jyoti. He also visited the cell of Veer Savarkar and other important sections of the historic cellular jail, including the Central Tower, Workshed, Gallows and the Museum Exhibition Gallery. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 p.m., a member of the government panel said. After the panel held meeting with

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटे दी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे दी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटे दी आयवर की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री NRangasamy, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP Ramalingam तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R Selvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक